0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: खूबसूरती के लिए हाइट चाहिए 5'4".
1: और फिगर
0: 36, 24, 36, नथिंग लेस नथिंग मोर।
2: लेकिन ये कैसे होगा?
3: White. Oh.

0: चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: महाराज?
0: Yes.
1: योगी?
0: That's right.
1: Welcome.
0: Thank you.
1: Welcome.